0: अर्दोनाम सलांग श्री अकला देवी सुनसारी पसल धादिंग बेसी पुछार बजार
1: प्रोपाइटर अनिल सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 9841179870 र 9860222660
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: Reliance Finance Limited, वित्तीय सेवा को और को परिभाषा
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा, ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, साथै ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल, सम्पर्क नम्बर 01-4985-910, 01-4985-911। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।

0: थोक लेन ढुक्क हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: Radio Khadim, Khadim Banta,
3: समुदाय का लागी, समुदाय को आवाज, रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: स्ट्रिंग इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले अपराह्नको 4 बज्यो
4: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाड़ो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले साँझको 5 बज्यो.

0: तो कहले सुखा रोगा किरा भाग्य साकी खोटो
1: निशाना हो तुम तो भी अन्ना बनाने लाभ दिलाना

गर्मिया में आयो हजूर सुकी सको घास वन में आगो लगो जीव जंतु को नाशा वन में आगो लगो वन जंगल खाता वन में होनी जीव जंतु ने सारे पीरा मंच फागुन देखी जेठ समय आगो लगने डरा आपनो आपनो।

0: खाना जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्ने नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।
1: वन तथा भू संरक्षण विभागद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: ग्राफिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रोंग लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सब अस्त्र को शक्ति बोकेको
3: रेडियो धारी समय संकेत
4: अहिले बेलुकीको 8 बज्यो।

जीवात्मा को घटघाट में तिमी छौ सोर हजार गोली तिम्रै आशा गर्छन् जीवात्मा को घटघाट।